रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

0: Texas music is here. The rhythm of the valley. The new high.
1: 94 FM.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk
4: All that.
5: Real talk, real life, real people, real radio.
6: The station that just doesn't stop.
7: 94 FM.
8: Sirdi ho ya garmi, Radio Dilbar aapke sang sang.
9: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास
10: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM